0: आना चाहें। और उसके बाद फिर आपसे ये मैं पूछना चाहूँगा कि ये किस तरह आप यहाँ के लोकल मीडिया को इकट्ठा कर सकते हैं ताकि ये एक जगह पे बैठ के बातचीत के जरिए इत्तफाक राय से एक क्लब जो है वो तश्कील दें ताकि वो रजिस्टर करा सके, ताकि उसकी ताकत जो है ना ज़्यादा बन सके। गदा साहब आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आपने एक कोशिश की थी माजी में, उस हवाले से थोड़ा सा।
1: जी, बहुत शुक्रिया। ये पाक मीडिया इन डेनमार्क जो है, हमने
0: जी
1: कोशिश की थी कि जितने भी हम यहाँ मुख्तलिफ मीडिया के लोग थे आपस में, यानी उसमें कोई ये प्रेस क्लब या और इस तरह का कोई नहीं था, लेकिन सिर्फ ये था कि अगर उसमें हम सब मिलके एक दूसरे को खबरें पहुंचा सके, क्योंकि सब यहाँ पे जॉब करते हैं, तो कोई जो है वीडियो यानी खबरें वीडियो खबरें बनाते थे, कोई रिटर्न लिखते थे, कोई रेडियो पे करते थे, तो उसमें यानी हम सब एक अगर जाता है वहाँ पे, तो उसमें ऐसा एक ग्रुप हो के अगर वहाँ पे तस्वीरें वीडियो जो है तहरीर भेज दी जाए, तो दूसरे जो नहीं जा सके वो भी जो है वहाँ से लेके, तो एक दूसरे की जो है हम हेल्प कर सकते हैं।
0: तो वो किस हद तक आप उसमें कामयाब हुए? ठीक
1: कुछ हद तक तो कामयाब हुए थे उसमें शुरू
0: है।
1: शुरू में, लेकिन उसके बाद जो है वो यही है कि कुछ लोग समझते हैं कि ये आप जो काम कर रहे हैं वो अपनी अपने नाम के लिए कर रहे हैं,
0: के लिए कर रहे
1: तो वो फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म हो गया। तो अभी जो
0: हैं।
1: है वैसे भी अगर आप डेनमार्क में देखें तो एक यहाँ पे दो रेडियो रह गए हैं, और या फिर अभी ये जो डेनमार्क मीडिया जो है वो अभी शुरू हुआ है कुछ महीने पहले, तो उसके अलावा आपका यहाँ पे जो है और कोई मीडिया नहीं है, तो यानी वो हमारा एक रेडियो पार्कलिंग था वो ख़त्म हो गए, एबसलोन में हमारे वो मलिक ताहिर साहब का रेडियो 7 स्टार था वो ख़त्म हो गया, गोंदर साहब रेडियो करते थे उनका ख़त्म हो गया। यानी कहने का मकसद है कि यहाँ पे मीडिया जो है वो बहुत चंद जो हैं अब रह गए हैं, तो
0: ठीक।
1: उस वजह से जो है वो जो है इतना मुतरक भी नहीं
0: तो
1: है।
0: असद साहब आपकी नज़र से भी, आप ज़ाहिर है देखा सुना होगा इस हवाले से, तो आपने अगर आपकी ख्वाहिश है या ये कोशिश कर रही है, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें क्या पेशरफ किस तरीके से होनी चाहिए ताकि ये सारे इकट्ठे
2: जो
0: आम
2: राजा
0: हो
2: भाई की बात
0: सके?
2: समझ आई है ना मुझे, वो यही हमारे दिन में भी था, तो इसलिए हमने कोशिश तो की सबको इकट्ठा करने की। हमने कहा कि हम इसका आगाज़ करते हैं, चाहे हम 3 लोग थे पहले, ठीक है ना, हमने आगाज़ कर दिया। फिर हम कहेंगे आस्ता आस्ता, क्योंकि जिस तरह ये कह रहे हैं मीडिया आस्ता आस्ता बंद हो रहा है, हालांकि वो बंद तो हुए उनके, लेकिन वो किसी ना किसी वाले से सब एक्टिव हैं अपने अपने लेवल, कोई फेसबुक पे है जिस तरह
0: ये
2: ताहर
0: ऑनलाइन वो कर रहे हैं कुछ ना
2: ऑनलाइन कुछ
0: कुछ।
2: कर रहे हैं, ताहर साहब मलिक ताहर साहब हैं ऑनलाइन अपना चैनल बनाया हुआ है, और
0: मलकुट्टा साहब भी कर
2: वो
0: रहे हैं
2: भी है,
0: एआई
2: देखे ना वो
0: वगैरह,
2: भी अपना बना
0: ठीक
2: के कुछ ना कुछ हो रहा
0: है, कर
2: है।
0: रहे
2: तो हम
0: हैं,
2: कहते हैं इनको ना एक प्लेटफॉर्म पे भी लेके
0: इकट्ठा
2: आए,
0: होना
2: ताकि कल
0: चाहिए।
2: को अगर कोई बंदा आता है, जब भी पाकिस्तान से कोई आता है ना सब पता है वहाँ तो उन्हें आदत है ना कि प्रेस बुलाएं आप, यहाँ प्रेस कौन सा है, तो हम जब प्रेस का सोचते हैं तो हमें कोई 2-4 बंदे अलावा नजर नहीं आता, इसलिए क्या था कि हम एक प्लेटफॉर्म लेके आए ताकि वो उस पर सब आए, चाहे वो हमारी कोशिश ये नहीं है कि आप रेडियो अपना बंद करें और हमारे साथ आ जाएं, वो नहीं, आपने जो काम कर रहे हैं वो आपने काम करना है, वो करते रहें ताकि जब भी हम एक मीटिंग करें, चाहे साल में एक मीटिंग हो, तो पता हो कि एक नाम है यहाँ पे। जिस तरह अगर यूके में देखें तो वहाँ पे 2-3 बड़े बड़े प्रेस क्लब हैं,
0: यूरोपियन मुल्क में
2: मुख्तलिफ हैं, उस तरह स्पेन में है, और डेनमार्क में ऐसा कोई नजर नहीं आता, कोई इतफाक नहीं था कोई कोई लोगों में आपस में ना, यही कोशिश की है, तो इंशाल्लाह वो आ रहे हैं आस्ता, क्योंकि उन्होंने देखा है कि वाकई संजीदा है इस मसले पे ना, तो वो लोग बात भी करते हैं और आना भी चाहते हैं, तो इंशाल्लाह आएंगे और ये टीम बढ़ेगी हमारी, ताकि जो जो जिस जिस लेवल पे काम कर रहा है वो करे अपना, जब कोई मेहमान आए पाकिस्तान से या किसी भी मुल्क से तो हम इकट्ठे हों, उन्हें बताएं हम कि हम ये देखिए ये मुत्तहिद हैं और हमारा एक प्रेस क्लब है।
0: ठीक। अच्छा मैं साहब, दैनिक सियासत के हवाले से आप अगर कोई शेयर करना चाहें कि इस वक्त जो हुकूमत बन चुकी है बड़ी मुश्किल से, तो अभी ये अपना काम सही कर रही है, मुझसे
3: मेरी दिलचस्पी ज़्यादातर जो भी है ना लिखने की सुनने की पढ़ने की वो पाकिस्तानी मीडिया से है,
0: मीडिया। अच्छा
3: तो डैनिश मीडिया का जो है हमने सारा तमाम बोझ जो है ये आसफ़ साहब के कंधों पे रखा हुआ है,
0: ठीक है,
3: तो इनके हवाले से हमें हर चीज़ का पता चलता है,
0: ठीक है,
3: क्योंकि लोग यही कह रहे थे इलेक्शन के दौरान कि मैटे वज़ीर आज़म बनेगी,
0: ठीक है,
3: तो कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं वेंसला की हुकूमत बनेगी, तो अब ये है कि ये मिलकर बन गई है ना, तो अब लोग पता है क्या कह रहे हैं कि ये जो है पता नहीं कितने दिन चलेगी, शायद एक साल के बाद फिर इलेक्शन कराने पड़ जाएंगे। तो ये जो जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान की और है, यहाँ की और है, तो यहाँ भी पार्टियाँ एक दूसरे के साथ तामन वैसे नहीं कर

0: आपको पता है इलेक्शन होने के बाद कितनी देर तक इनके डायलॉग होते रहे हैं, मुद्दत हुई है ना डायलॉग का, उस दौरान लोग तो ये समझते हैं कि जी समझौता नहीं हो रहा, बात समझौते की नहीं, गिव एंड टेक की थी बात। जब उन्होंने ऑफर की है तो सबका समझौता हो गया। अब ये समझौता इस बात पे भी हो गया है कि गैर मुल्कियों के मुतल्लिक कवानीन बनाने हैं, आपने बात की है ना, तो अभी मेरे पास मैं घड़ी देख रहा हूँ 15 मिनट रह गए हैं, तो इसके ऊपर तो 2 घंटे इंटरव्यू हो सकता है।
1: मैं थोड़ा सा इसको बढ़ाऊंगा, मेयर साहब
0: ये गिव एंड टेक का सौदा हुआ है, तो ये
1: मेयर साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि गवर्नमेंट तो बन गई है, आप लोगों को पता है पता नहीं कितने अरसा तो उनकी आपस में बातें चलती रही हैं, पहले मेडे को उन्हें मौका दिया, फिर विंसा को दिया, वो भी नहीं बना सके, ज़्यादा रिकॉर्ड वही थी लास्ट के कासम हुसन, वो अपना ज्यादा चाहता बल्कि खुद बनना चाहता था, ज्यादा वजह यही थी
0: जिया, जिया।
1: उसकी क्योंकि वो उसकी सीटें ऐसी हैं कि वो उनके उसके बगैर कोई हुकूमत बन नहीं सकती थी। जब हुकूमत अब बन गई है तो ये छुट्टियां आ गई हैं, अब फिर भी लोग हम जो देख रहे हैं ना इनके बारे में कि अब ये छुट्टियों के बाद जो आएगा इनका पता चलेगा ये कैसे चलाते हैं, फिर भी कहते हैं कि ज़्यादा ये 1.5 साल हुकूमत चलेगी, उसके बाद हो सकता है ये मेटे जो है वो आगे EU में चली जाए और यहाँ पर कोई नया बंदा आ जाए या फिर नया नए इलेक्शन हो ना, तभी देखेंगे। अभी ये छुट्टियाँ गर्मियों की ख़त्म होती हैं तो फिर क्या ये कैसे इनके आते हैं जो नए कानून बनाते हैं, नए वादे जो इन्होंने किए हुए हैं बड़े बड़े वो कैसे पूरे करते हैं।
0: लंदन में ऐसा अच्छा, हो चुका है ना।
1: हाँ, लंदन में तो वो
0: हर देश ने प्राइम मिनिस्टर का पीरियड जो है मुकम्मल नहीं हुआ,
1: नहीं हुआ, अब नया आ गया, अब नया आ रहा है, बल्कि ये
0: दुनिया बदल गई है, बदल रही है,
1: कल आएगा उनका नया।
2: बिल्कुल अच्छा, डैनिश सियासत के साथ साथ पाकिस्तानी सियासत भी हमारे अंदर रची बसी हुई है, ये हो नहीं सकता कि हम जहाँ भी रह रहे हों वहाँ पाकिस्तान की सियासत के हवाले से जिक्र ना किया जाए, तो पाकिस्तानी सियासत को डेनमार्क में आप कैसे देखते हैं?
1: पाकिस्तान देखें, हम हमारा तल्लक पाकिस्तान से, जो बंदा यहाँ पैदा होता है पहले 15-20 साल गुजारता है उसके जहन से तो वो आप चीज़ निकाल नहीं सकते।
2: ठीक है,
1: तो हमारे अंदर भी देखें पाकिस्तान है, पाकिस्तान की पार्टियाँ हैं, हम एक नज़र रखते हैं, अगर मेरा जो पाक डैनिश मीडिया है जो हमारा है इसमें भी अगर देखें ज़्यादा कोशिश होती है कि यहाँ डैनिश खबरें लगे या इंटरनेशनल, फिर भी कोई ना कोई खबर कभी कभी ऐसी आ जाती है कि लगानी पड़ती है,
2: ठीक है,
1: ताकि सियासत के बारे में लोगों को पता चले जो और बाकी जो इंटरनेशनल हो रहा है वो भी पता चले ना।
2: ठीक है,
1: तो ये तो हमारे अंदर है, हम यहाँ पे भी कहते हैं जी पार्टियाँ नहीं होनी चाहिए, कुछ लोगों का ख्याल है कि होनी चाहिए, मेरा भी ख्याल यही है कि पार्टियां नहीं होनी चाहिए यहाँ पे ना, एक पाकिस्तान की एक पाकिस्तान के लिए सबको काम करना चाहिए, नाम देना चाहिए, क्योंकि एक सिलसिला चल रहा है, तो मैं भी एक पार्टी का हिस्सा हूँ, पर एक चल रहा है तो हम भी चला रहे हैं, पर मेरा अगर ज़ाती ख्याल पूछेंगे ना तो मैं यही कहूँगा यहाँ पे पार्टियाँ सियासत नहीं बल्कि पाकिस्तान का नाम होना चाहिए, सबको मिल के पाकिस्तान का नाम लेना चाहिए।
2: क्या आप वजह बताते हैं कि क्यों नहीं होनी चाहिए?
1: क्योंकि वो फिर डिवाइड होते हैं लोग ना, देखें ना यहाँ पे अगर आप देखें हम 4-5 ग्रुप बने हुए हैं,
2: ठीक है,
1: हम इकट्ठे भी कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम कहते हैं जी फलां पार्टी का वहाँ आया हुआ हमने नहीं जाना, वो कहता है फलां आया हमने नहीं जाना, तो अगर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएँ तो हम कोई भी प्रोग्राम बड़े अच्छे तरीके से कामयाब कर सकते हैं। 14 अगस्त हो, ये जो बड़े बड़े कौमी दिन है हमें इस पर काम करना चाहिए, इस पर इकट्ठा होना चाहिए। अच्छा। अगर हम यहीं पे 14 अगस्त बड़ा प्रोग्राम करें टाउन हॉल, जैसे हमारी कोशिश थी कि इस तरह हम टाउन हॉल पर अपना बड़ा एक प्रोग्राम बनाएं, पर क्योंकि वो पहली बुक जगह बुक हुई थी
2: 14 अगस्त का
1: क्योंकि अच्छा। 14 अगस्त आ रहा है फ्राइडे को ना, पर ये पूरा वीक ना एक और ग्रुप है डैनिश जो उन्होंने पूरा हफ्ता बुक किया हुआ है, तो उसमें हम नहीं कर सके।
2: अच्छा, तो आप कहाँ फिर कर रहे हैं आप?
1: नहीं अभी तो हमारा नहीं था हम, देखा मैंने पहले बताया कि मैं पार्टी को यहाँ पे नहीं, अच्छा, अब यहाँ बैठा हूँ अभी तो मैं पार्टी का तो नाम ही ले रहा, ना ही मेरी कोशिश है कि हम पार्टी को प्रमोट करें, क्योंकि यहाँ पे हमने पाकिस्तान कम्युनिटी की बात करनी है, वो भी जो हमारा प्रोग्राम था वो पाकिस्तान कम्युनिटी की तरफ से,
2: पाकिस्तान कम्युनिटी
1: ऐसे नहीं था कि हमने खास पार्टी या किसी सियासत वहाँ तो लाना ही नहीं, हमने तो अपने बच्चों को दिखाना है कि यहाँ पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान को दिखाना है हमने यहाँ।
2: फिर अभी आपने कोई अरेंज किया कि कहाँ?
1: नहीं कर सके ना, क्योंकि जो कोशिश थी हमारी वो थी टाउन हॉल, मेरा हमेशा ही रहा है, अब अगले साल देखें क्या होता है, पर यह है कि नहीं कर सके ना उस तरह, क्योंकि बाकी जगह जो है ना जो हमारा दिल है ना कि पाकिस्तान का नाम प्रमोट हो, लोग देखें, ओपन हो, और वो जगह यही है टाउन हॉल है।
2: अच्छा,
1: यहाँ पे अपना
2: कुछ दिन अगर आप चेंज कर से, जैसे कि मेरी नज़र से गुजरे हैं 2-3 प्रोग्राम हो रहे हैं यहाँ, 8 अगस्त को हो रहा है एक अल्बर्ट सलोन में, एक हो रहा है 14 अगस्त को तो ज़ाहिर है एम्बेसी में होगा, पहले टाइम और पिछले टाइम कोई और प्रोग्राम हो रहा है सोसाइटी के हवाले से, फिर 116 को हो रहा है, इस तरह तो दो तीन प्रोग्राम तो ये मेरी नज़र से गुजरे हैं। इसी तरह आप कोई ऐसा देख लें कोई ऐसा
1: ये था एक दिन 23 का दिन था एक हमारे देर में 23 पर वो टाइम इतना तेज से गुजरता है ना कि बंदा सोचता है अब 23 अगस्त जब आएगा वो जी 14 अगस्त तो इतना गुजर गया आप अभी प्रोग्राम कर रहे हैं देखे ना वो ऐसे तेजी से वक्त गुजरता है ना पता नहीं चलता। पर इंशाल्लाह अगला जो अगला साल होगा ना उसमें हम कोई अच्छा प्लान करेंगे, कोशिश होगी कि 14 अगस्त के आसपास कोई हो और अच्छी जगह पे हो।
2: ठीक, अच्छा मेहर साहब
0: जी
2: आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो थोड़ा सा इंटरनेशनल आप भी सुनते हैं और देखते हैं खबरें भी, इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है अमेरिका ईरान इसराइल के हवाले से, ये ज़रा मुझसे बताएं कि ये दुनिया को मुतासर कर रही है माशी तौर पर भी इक्तसादी तौर पर भी सियासी तौर पर भी, कीमतें जो बढ़ रही हैं पेट्रोल की या रोज़मर्रा चीज़ की, तो आप क्या समझते हैं कि ये मज़ीद ख़राब होगी सूरत हाल?
0: बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक जो सिचुएशन जा रही है मिडिल ईस्ट की ना, देखें जी सुपर पावर जो है ना उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर जो ज़मीन का खित्ता है ना, ये मेरी सोच है इसे मुतफिक होना किसी का ज़रूरी भी नहीं, इस खित्ते को उन्होंने अपने अपने हिसाब किताब से मईशत के लिहाज से और अपने सुपर पावर होने की ताकत के लिहाज से इसके हिस्से किए हुए हैं। और जब भी कोई जंग लगती है तो आपको मैं एक मिसाल दूंगा कि कादर हसन जंग में कालम लिखते थे, 40 साल पहले मैंने वो कालम पढ़ा था, उन्होंने लिखा था कि अब दुनिया की जितनी भी मईशत है ना इस मईशत के हवाले से दुश्मन को शिकस्त दी जाएगी,
2: ठीक है,
0: उसकी इकॉनमी तबाह करके उसके वसाइल ख़त्म करके उसकी फौजों को ख़त्म करके और अपने जदीद, अब उसकी मिसाल मैं ऐसे भी देता हूँ कि ये जंग रुकेगी नहीं, यानी जंग रुकेगी यानी इस्लामाबाद में आपने डायलॉग किया है, वियना में डायलॉग करेंगे, पेरिस में करेंगे, लंदन में करेंगे, न्यूयॉर्क में करेंगे, बीजिंग में करेंगे, मैं ज़रा इसकी डिटेल बता दूं, लेकिन ये जंग वक्फे वक्फे के साथ चंगारी जो है ये शोला बनती चली जाएगी,
2: ये बात सूरत की
0: वही बात है। और सुपर पावर इस वक्त अगर देखा जाए वो अपनी मर्जी मनवा रहा है क्योंकि उसके पास वो टेक्नोलॉजी है हथियारों की, उनका दावा है, मैं नाम लेता हूँ अमेरिका के सदर का कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है दुनिया को फतह करने वाली किसी दूसरे मुल्क के पास नहीं है, ये उनके अल्फाज हैं। तो जनाबे वाली ये उन्होंने लिखा था कि मैदान जो तीसरी आलमी जंग का है पहले तो यूरोप में रहा है ना, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है, अब ये मिडिल ईस्ट में मैदान सजेगा,
2: दुनिया को अपनी लपेट में ले सकता है,
0: ये अभी मिडिल ईस्ट में सज चुका है।
1: मेहर साहब एक ये भी है ना, ये एक जंग वसाइल की जंग है जो कब्जा करना चाहता है,
0: हाँ वसाइल की जंग है।
2: और ये करना चाह रहा था कि इसका भी जवाब दे दे कि ट्रंप के दिमाग में या जहन में फिर ये ख्याल आ गया कि ग्रीनलैंड को हमें हासिल करना चाहिए, तो इस हवाले से डेनमार्क की पॉलिसी बयान तो आ रहे हैं गायब गायब, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताना चाहिए कि ये किस हद तक डेनमार्क
0: वसाइल पे जंग है जी, बस वसाइल पे कब्जा कर,
1: देखिए जिस तरह उसने वहाँ शुरू किया उसका देन यही था ना ट्रंप का कि हम दो दिन लगाएंगे तीन दिन तबाह बर्बाद करके अपने तेल वगैरह के जो भी आगे हमने उन्होंने जाना था कोलंबिया या उधर जाना था, फिर उसके बाद क्वीनलैंड वेनेजुएला तो ले गए ना उनको उठा के, उसके बाद क्वीनलैंड की तरफ बयान आ रहे थे उनके, अभी भी उनके बयान आ रहे हैं, पिछले दिन में भी एक बयान आया था कि हम अभी
2: तुर्की में जो नेटो कॉन्फ्रेंस
1: उसमें भी हुआ है, उससे पहले उनका भी कोई मिनिस्टर था अमेरिका उसने कहा था अभी हम भूले नहीं हैं अभी इस पे बात चलेगी ना, तो वो पर यह है कि वो चाहते तो यही हैं, पर इस पे इस मसले पे पूरा यूरोप इकट्ठा हो गया था डेनमार्क के साथ, ये तो ऐसा था अभी तक वो ले भी चुके होते क्योंकि उसने कौन सा वहाँ जंग करनी है, वहाँ उसने तो आना है और कब्जा करना है, क्योंकि डेनमार्क तो इस नहीं है इतना कि वो उसका अमेरिका का मुकाबला कर सके,
0: मुश्किल है मुश्किल
1: मुश्किल है, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये पास ये डेनमार्क के पास ही रहेगा और डेनमार्क का कहता है हमारा हिस्सा है और ना बेचना नहीं चाहते।
0: एक बात मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि हम मिलते रहते हैं सौदा सलफ खरीदने के लिए या वैसे जितने भी हम बूढ़े आदमी हैं 70+ हैं 80 हैं उनके साथ मेरी जब गुफ्तगू होती है तो मैं यही उनसे कहता हूँ कि ईरान के बाद वो कहते हैं पाकिस्तान की बारी है,
1: बिल्कुल
0: पाकिस्तान की बारी है, क्यों कि वो नहीं चाहते कि जो क्लब है, आज आपको मैं बताऊं, जो एटमी क्लब है ना उसके अंदर 5 मुल्क हैं, चाइना, रूस, अमेरिका, पेरिस और बरतानिया, इन 5 मुल्कों का एक एटमी क्लब है, जैसे आप कह रहे हैं हमारा प्रेस क्लब है, उन्होंने ये ओपन कहा है कि हम किसी छठे मुल्क को इसमें शामिल नहीं होने देंगे।
1: इंडिया भी है 7वां,
0: इंडिया को छोड़ें आप।
2: बहरहाल मेहर साहब, आप जो फरमा रहे हैं ना कि ये एटमी ताकत अमेरिका इस वक्त, तो मैं नहीं समझता कि इस मौजूदा दौर में, मौजूदा सूरत हाल में उसकी वो ताकत उस तरह से अभी कायम हो सकती है, क्योंकि इसमें बाकी ब्लॉक भी जाहिर है, चाइना, रशिया, वो आगे इस वक्त चाइनीज़ टेक्नोलॉजी आपको पता है कि वो कितनी तेज़ी के साथ वो पूरी दुनिया
0: बहुत तेज़ी से
1: अमेरिका की जो सुपर ताकत था वो उसने ईरान ने उससे मुकाबला करके दिखाया
0: है,
1: अभी ताकत ही रही अमेरिका की जो पहले था नाम उसका था।
2: आपने जो बात की है ना कि इक्तसादी पाबंदियां देख लें, कितने सालों से 45 सालों से वो फेस कर रहे हैं ना, इसके बावजूद वो
0: लेकिन गुरबत भी तो है ना, उसके करेंसी भी तो डाउन हुई है, तुर्की का लीरा बहुत पावरफुल था,
2: सर्वाइव
0: कर रहा, लीरा भी गिर गया है।
2: अच्छा आसफ साहब, डेनमार्क आप क्या समझते हैं कि ये जो सूरतेहाल बनी हुई है इसमें डेनमार्क का रोल किस तरह, ये अपना रोल अदा कर रहा है कि इसको पता है कि आने वाला वक्त जो है मुमकिन है वो अमेरिका इस तरफ रुख करे, तो इसके लिए डेनमार्क ने कोई, आप अपनी राय ज़रा बताएं कि कोई तैयारी की हुई है या कुछ कर रहे हैं, क्योंकि तारकिन वतन जो है ना, ये मैंने भी बातें सुनी है कि वो तो कहते हैं कि हम तो तैयार हैं जंग के लिए, अमेरिका आए तो सही, ट्रंप आने की जरूरत तो करे, लेकिन डेनमार्क के अपने लोग या डेनमार्क हुकूमत इस सिलसिले में क्या कुछ करने जा रही है?
1: ये जंग तो कर नहीं सकते, ये तो आपको पता है इतनी ताकत नहीं है, पहले भी पूरे ईयू जो है वो अमेरिका ने अंडर उसकी छतरी के नीचे है, तो वो कैसे लड़ सकते हैं, उनके पास तो है ही कुछ नहीं, तो ये तो सियासत ही है, सियासत और एक टेबल बैठ के बात करें, और वो बात कर रहे हैं, ये नहीं है कि वो उसके साथ को खड़ा नहीं हुआ, डेनमार्क अकेला नहीं है इस मसले पे, पूरा यूरोप उसके साथ है, ईयू में जो इनका बना हुआ है उसमें सारी इस पे बहस होती है, और सब ने बयान दिया है हक में डेनमार्क के, और जो अवाम है वहाँ की वो भी चाहते हैं कि हम डेनमार्क के साथ रहें, तो ये इतना आसान नहीं होगा ट्रंप के लिए कि वो आके कब्ज़ा कर ले, और उसने देख भी लिया है जो पिछली जो कॉन्फ्रेंस हुई है तुर्की में उसमें भी देखा है कि सारे मुत्तहिद हैं पूरा यूरोप, तो उसने ऐसी कोई बात ही नहीं की, बल्कि खामोशी है उसकी तरफ से ना, वैसे तो थोड़ा बहुत बयान आता रहता है क्योंकि वो एक ताकत है, तो वो सरा सरा भी होंठ भी हिलाएं तो वो सारी दुनिया लड़ती है, तो उसका असर तो है, लेकिन इतना आसान नहीं है कि वो आके कब्ज़ा कर ले अमेरिका जो है।
0: मैं यहाँ एक बात का ऐड करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है ना एटमी ताकत कहते हैं कि ठीक है जी, इस्लामी मुल्क है, सब कुछ है, लेकिन जिस मुल्क के अंदर करप्शन सैलाब की तरह हर घर में घुसी हुई हो, ये सवालिया निशान है, क्या वो मुकाबला कर सकती है ताकत? भारत का तो कर लेगी, सुपर पावर का नहीं कर सकती।
2: तो इसके इसका क्या हल है मेहर साहब?
0: हल ये है कि आप उसके ऊपर उसको सजा दे ही नहीं सकते, अमीर के लिए कानून और गरीब के लिए कानून और, मेरी बकरी गली में क्यों बंधी या चालान हो जाएगा, अमीर का बेटा कत्ल करे तो दूसरे दिन जज रिहा कर देता है, तो ये तफरीक जो है आपको कभी भी मुकाबला नहीं करने देगी जिंदगी भर।
2: तो ये कैसे खत्म हो सकती है?
0: कैसे, मैंने कहा है ना कि करप्शन
1: ताकत है, अमेरिका के पास ताकत है,
0: आपके सुप्रीम कोर्ट के जज जितने भी गए हैं उन्होंने कहा कि करप्शन माँ है पाकिस्तान के अंदर बुराई की।
2: चले
0: अब क्लोज करें आप।
2: ठीक है आसफ साहब, आखिर में कोई ऐसी बात जो आप समझते हैं कि हमारे देखने और सुनने वालों तक पहुंचनी चाहिए वो आप करें, और उसके बाद प्रोग्राम को
1: शेर साहब बहुत शुक्रिया आपने मधु की, आज बड़े अच्छा प्रोग्राम चला रहे हैं और इतने अरसे से चला रहे हैं, ये सिलसिला जारी रहना चाहिए, और हमारी कम्यूनिटी को भी ये पैगाम है कि आप यहाँ की जो सियासत है, यहाँ के जो माहौल है, जो आपके बच्चे गलत सोसाइटी में जा रहे हैं उनका, उनकी केयर करें, उनको देखें, उनको, वैसे तो हमारा ये जो तलीम का लेवल है बहुत अच्छा है पाकिस्तानियों का, जो बाकी बच्चे जो हैं उनको भी इस तरफ लेके आएं, उनकी कदर करें, तो इंशाल्लाह ये हमारे लिए अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि हमने इधर ही रहना है, यही डेनमार्क में रहना है, यही हमारा मुल्क है। अब हम चाहें भी तो वापस नहीं जा सकते, तो इसलिए अपना इसको अपना मुल्क समझ के इसकी हिफाजत करें।
2: ठीक, अच्छा बाप,
0: बिल्कुल, डेनमार्क हमारे बच्चों का मुल्क है, हमारा मुल्क है, हमें इन्होंने हर तरह की सहूलत दी है। बस ये है कि आप जिस दिन से आए हैं आप काम भी करते हैं और मीडिया का काम भी कर रहे हैं, इसके अंदर जो है ना जिद्दत पैदा करें। आप कह रहे हैं ना कि लोग इसको पसंद करते हैं, लोगों को और अपने व्यूअर बनाने के लिए, सुनने वाले बनाने के लिए आप वक्त के साथ साथ इसके अंदर जिद्दत पैदा करें, इसको चैनल बनाएं
2: बिल्कुल
0: रेडियो की बजाय, यही पैगाम है।
2: बिल्कुल, मैं साहब की बात को आगे में बढ़ाते हुए ये मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म से जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे वो सियासी हों, समाजी हों, सहाफ़ती हों या सकाफ़ती हों, किसी भी हवाले से, इसमें आप लोगों की शिरकत बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और आपकी जो ख्वाहिश या डिमांड्स होती हैं उनकी भी ज़रूरत होती है। इसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट किया करते हैं कि आप जब हमारा प्रोग्राम देखते हो सुनते हैं उसको देख कर नीचे कमेंट्स किया करें और हमें ये बताएं कि क्या या किस मौजू पर हम प्रोग्राम करें या किस तरीके से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारी कोशिश तो यही है कि इस प्लेटफॉर्म से जो भी प्रोग्राम हो वो हम सब के लिए इंफरादी तौर पर और इज्तमाही तौर पर वो फ़ायदा मंद हो, और अगर काज अच्छी हो तो मैं समझता हूँ कि सबको हमारे साथ मिलना चाहिए। इसी के साथ इस आज के प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह ताला एक नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद और डेनमार्क पाइंदाबाद।